निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी।

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गलवाए संत पापी पाप असंत पूरे आए संत मलेच मल भग पाए असंत निंदक करें पा नानक नीच कह मर अम जावा जो तुम पावे सही परिकार सदा सुना संत नाम राम राम।

गावन तुदनो चेत गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहम तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगम अश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले।

सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर

कसे को हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास नरे है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करो रक्षा, राख ले हो मुहे राख नुहारी, साहिब संत सहाय प्यारी, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,

ममसकार है तही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पालमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जाबुद करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जाब्या करक करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद आर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद्य अनिल अनाद्य संभव।

अनुमानत महामूढ़ का चपेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का तीन तनह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती भरणत भिन्न।

कानू पसरूपा राम कपयो राव कहीं फूपा अंडज जेरज से तज कीनी होत भुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हुआ बैठा कहो सिमट पयो शंकर एकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभा।

द्वेष करो रण काता, जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

सगल समग्री तुम रह सूतर धारी तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरी कत मित तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी पूर्ण जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस जिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरै करनो नदयावे धाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठदार का ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी से बोलो जी जिन्हां संगा सिंघणियां ने धर्म है सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रहे न चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुर्बानियां दित्तियां धर्म निहारिया सिखी के साथ स्वस्थ संग निभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिता वे चितावन का सदका सर्व सुख हो जह जह खालसा जी साहिब तह तह रिश्यात देखते फतेह बिरत की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन शनान चुक गया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पत करा का आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माण्यो के माण निताण्यो के तान न्योटिया दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी के चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान महान बख्शिश हुई अमृत वेले तो लैके हुण तक आप जी ने संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल किया संध्या वक्त का समा जान के सौदा रहरा साहब दे जाप होए महाराज जीओ बाणी पढ़द्या आप जी की सेवा संभाल करद्या हुईआं बेअंत बेअंत भुला बख्श देनिया जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तुम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा आईआं संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिक्खी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी अंग संग होके सहायता करनी कृपा करनी महाराज जी बेन संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हन जाप सरवण करदिआं आप जी का धन्यवाद करदिया बेहत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंगा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकता पाउणिया श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया चढ़ती कला बख्शिश करनी महाराज जी आप जी के चरणा अरदास बेनती सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम तन तन साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी सोढ़ी सुल्तान सच्ची पातशाह अज आप जी का ज्योति ज्योत दिवस सिख गुरद्वारा सिनहोजे दियां समूह संगतां वल्लों अमृत वेले तो लैके हुण तक बड़े प्यार श्रद्धा भावना नाल मनाया गया बेअंत संगतां ने तन मन धन दे नाल सेवावां कीतियां आप जी के दर दियां हाजरियां भरियां सारियां संगतां दियां सेवावां
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ $4,400 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ।

वाहे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सत गुर प्रसाद तू सत गुर चौहों जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नार साधक सिद्ध सिख से वंत तुर है तुर आद अनाज जुगा त्रै त्रैधारी त्रै लोहे अगम निगम उदरण जरा जमे आरोहे गुर अमरदास सिर थप्यो पर गामी तारन तरन अग अंतक बदे ना साल काव गुर रामदास तेरी सरन हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हार बख्श ले मेरे स्वामी

जे तू श्रोता हो गया, सुन वाला हो गया, नौ निधियां तेरे पिछे तेरे मन च जो चितवेगा वो तेनू प्राप्त हो जाना। जो तू केवल एक श्रोता हो जाए कि मैं सुन लवा, सुनया अठ सठ का इसनान, अठाठ तीर्थ मने गए ने, एक एक तीर्थ के अंदर किन्ने ही तीर्थ ने। पहला ये तीर्थ केवल गंगा किनारे मने गए सी, अजकल ने कुरुक्षेत्र वर्गिया भी अठाठ तीर्थ होने का ऐलान कर दिता है भी ये अठाठ तीर्थां विचों है। तो भाई गुरदास जी चरणोदक होए स्फुर श्री तज बैकुंठ धरत ते आई, 900 नदी निर्निमे अठसर तीर्थ संघ समाई, कि जो गंगा नदी है इस दे किनारे किनारे उत्ते अठाठ तीर्थ पहला मने जांदे सी, पर नाम दा प्रवाह नहीं सी, इस करके गुरमत ने उस नूं मानता नहीं दिती। आख्या सिखा तेनू अठसर तीर्था दे उत्ते इशनान करन जान दी लोड़ नहीं है कि तू गुरु की बाणी नूं सुनना करें। जब तू गुरु की बाणी नूं सुनेगा तेरा अठाठ तीर्थां दा इशनान तो कुछ भी नहीं, पासकु भी नहीं रहेगा, तेरे उत्ते बहुत वड्डी बख्शिश हो जाएगी। कई बार कई सज्जन मिसाल दे देंगे भी जे ओ इशनान है तो गुरु के सरोवरां दा भी तो इशनान ही है ना, उन्हां किसी भी तीर्थां दे उत्ते तुहानू नाम दा प्रवाह नहीं मिलेगा। सिख नूं अकीदा नहीं होना चाहिदा, देखण वास्ते कितने ना कितने प्रचारकां नूं जाना चाहिदा भी इत्थे वर्तारा की वरत रहा यह वेख लेना चाहिदा। सतगुर साहब उन्हां तीर्थां ते गए ने, लेकिन तीर्थां ते जाके सच बयान कीता, उत्थे सच की है भी यह तीर्थ नहीं है, इत्थे तुहानूं लुटिया जा रहा है, तुहानूं कर्म करना जपाया पा रहा है, यह धर्म धर्म नहीं, जिहड़ा धर्म तुहानूं यह दस्या जा रहा है। इस वास्ते सानू मत दे दिती यह है कि जाना है तो फिर उत्थे जाके सच दा होका जड़ा है वह देना है, ना कि उन्हां तीर्थां तों कोई भावना रख के इशनान करना है। तेरी भावना जिहड़ी है वह गुरु के उत्ते होवे, इक तेरा नित दा इशनान, क्योंकि सानू तरोज लाया कि तेरा इशनान की नाम दान इशनान दरड़ाया, भाए भगत तेरी भावना वाली जी ना वह भगती होवे, तेरा आही जड़ा है पुरब हैगा है कि जड़ी तू प्यार भावना में दूजा गुरु के सरोवर साढ़े वो बाबत भाई नंद लाल जी का बचन है कि एक कल नू कह दे कि विशना चे गंगा मुकाबल बा अमृत सरस के हार हशतो चष्ट चाकरश आमदा, भी कोई गंगा सब तो वड्डा तीर्थ मन्ने काल नूं किते धन गुरु रामदास मां सरोवर दे नाल उहदा कोई मुकाबला कर देवे। ते भाई ओह जे अठाठ तीर्था कई गुरु रामदास दे घर दे चाकर लगे फिरदे ने, सुणिया पढ़ पढ़ पाव हे मान, जिन्हां ने सुनना कीता है ते फिर सतगुरु साहब जी दी बाणी नूं सुण तो बाद पढ़ना कीता है, ते पढ़न वालिया ने भी जदों प्रेम नाल पढ़ना कीता है ते उन्हां नूं इमान सत्कार हाजिर होया। सुणिया लागे सहज ध्यान, सहज आत्मक अवस्था यह दुख सुख नहीं व्यापदा, जिन्हां ने गुरु की बाणी नूं सुनना कीता है उन्हां नूं यह बख्शे कि वह सहज अवस्था विच पहुंच गए। सहज अवस्था विच सदा लई खेड़ा है, उसे कदी भी चिंता नहीं, सहज अवस्था च पुज्या होया भगत है। नानक भगता सदा विगास, उस नूं सदा लई खेड़ा है, उसदे सिर दे उत्ते को आरा रख देवे ता भी वह खेड़े दे विच है, उसका कोई बंद बंद कट देवे ता भी वह खेड़े दे विच है, उसकी कोई पुठी खल डा देवे ते ता भी वह खेड़े दे विच है। साहब जी कहते साडे कोलों गुरबाणी इस गलों मनती है कि जिन्ने साडे श्वास बिरथा जाते ने वो एक बहुत वड्डा गुनाह है, लेकिन जदों असी
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

करते के केते वेश राग धनासरी महला पहला। गगन मै थाल रवचन दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय कुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सह सब नैन नन नैन है तुही कहो सहस मूरत नन्ना एक तुही। सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन सहस सब गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिसै चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद न मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारन का होए। जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बो भरिया मिल खाल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हारली मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाव। साकत अर साध न जाने आतन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चढ़ै चुभै दुख पावै है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अवनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा हे। जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा आ गया बसन सुहेला। उद घटै दिनस रहनारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै एहो रस। अकत कथा दिन जानी जागो आए सोई बिहाजो हर गुरते मुने बसेरा। निज कर मैल पावो सुख सहजे बहुर न होए को फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे मोको।

पापी भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मै सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नावै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मैं जानै अस थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोई कर कृपा अंतर उर तारै पश प्रेत मुगध पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा सुवरन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए आनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल सलोक उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान तहरै कई कोट कब का विचारै कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख ने पजाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त्र कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते निरै सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बहु जूने फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जह जय भाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को भोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ अभिनाश कई कोट मंगै सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन तहन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश

विरोध किस संग कमात। जब इसका वरण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहो किसे ब्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह का किस होवत परम।

तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभय का तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन निरंका

जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पूक कवंत।

हैं, अपि हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनील हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरीक हैं, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती बेपूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता, अदो ऊर्ध अर्दंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेति अपेति अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तीराजो चाचरी छंद, जले हैं, तले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, देश हैं, अपीस हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्त्वं निरनाथे, नमस्त्वं परमाते, नमस्त्वं गंजे, नमस्त्वं पंजे, नमस्त्वं काले, नमस्त्वं पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे, नमो साहसाहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृष्टं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा हृत सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्म अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वं भुगता सर्वं युगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौनपुर कपार सर्व मान्त्र मान देव पेवादुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जातर रूप रंग नरेक आदपुर कोदार मूरत जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम कामहीन पेकता मुँह नह जाहे
सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जाने जेबे दौर कतेब रूप रंग न जात पासो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चकर बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जा पीजे जाप आ देवनाद मूर्त था प्यो सब जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख भे संग राग नरंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमेक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगहीन भंग नाथ मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र ना जान नहीं जे रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाकै नित भागत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र ने आवहि वह चित मद पार चंत्व प्रसाद

राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांगा बापंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व परनाटे अंडन बाडे चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय अकृशय भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज भिषय किया गंज कर्म किया भंज भरमे किया भिज लोक किया दित सुख के अवतूत बरने के बेभूत करण कि राजन प्रभा है कि धर्मन तुजा है कि आशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतं कृति है कि छत्रं क्षत्रिय है कि बर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अधिव है कि आप अपेव है कि चित्रं बहिन्न है कि कै अधीन है कि रुझि रजा कै रही मैं रिहा कै कि पाक बेअब है कि गै भूल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है के कारण कुनिंद के रुझी देहांद के राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय के सर्वंग कली मैं के परमंग प्रहिम मैं के अकल अलाम मैं के साहिब कलाम मैं के हुसन अल वजू है तो मामूल रजू है हमीसल सलाम मैं सलीकत मुदा मैं गनीमुल शिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजाहिक यकीन अनेकुल तरंग है अपीत है अपांग है अजीजुल निवाज है गनीमुल किराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिभर्गं त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकंग प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रजुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुक्त अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपीक हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अतूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंत हैं अबंध हैं अभक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं अलिख हैं अदिख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं अगा हैं असंभ हैं अगम हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित्य हैं सुनित हैं अजात हैं आजाद हैं चरपट चंतु प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता
सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न सात शरीक है मितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जुमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरा सुल्फिकन है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशल अलेख है हमीशल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मितो सुबास है कि अचिव स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छंत्व प्रसाद गुणमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनाश मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश जीवांग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विश अपंड जल थल महंत दिस्विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजप्पा जप है अथप्पा थप है अकृता कृत्य मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत्य अकृता कृत्य तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य मृता मृत है अजब्बा कृत्य मृता मृत है निर्णायक है कलकायक है स्वम पर है कुरणालय है निर्पनायक है सर्पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंगताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख
अकाल दयाल लेख भेख अनाम काम गाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजूनी अमोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनहमे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विगनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते कृति बिने कृति के मातेम तंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के भूप पली बेत न्यावत शीश न जात विचारे इत्ते पय तो कहाँ पय भूप तंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिक है पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासुन मातिम तंग न मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े परे आर अपचार एसार की तार पचैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साध श्री सब को शरणायक जाचक नेक सुएक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे उन पर तापन बाढ़ जय तुन पापन के भूपुंज खपेंगे साधु समूह पर सन फिरे जग सत्र सुबह अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराध जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फिर न देहित रहेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिरियो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग
श्री भगवान को भेद न पायो।

जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कभ्यो बास बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो। आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए। सब बैरन कुआ संघरिय, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याहूं। जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझु करे हो रक्षा। राख ले हो मुझे रखन हारे, साहिब संसहाय प्यारे। दीन बान दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जीव अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो। आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मुंह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब आकर्क कर तो हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृष सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद शंभु। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपा हनुमानत, महा मूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तीती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव, आद जुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठ बतुत पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे अस तुझदव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। उर्ख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहर हो, ताके ताव तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छाछव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो का, तारित दुष्ट दुख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल भिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री अस्तो जय भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकड़ना तिन नर के रह। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पुनि जय, अल सहस पुन तीन कही जय। पाद्र सुदेष्ट मीर वारा,
तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ही बकाने हूँ।

खेत छुट्टी तिलवार जो सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नहा फली है बपुड़ी पीतन विच सुहा पौड़िया पिना।

नदरी करण लंघाए पार कोलू चरका चक्की चक तलवार ओले बहुत अनंत लाटू माधाणियान गाह पंखी पौंदियां लैन ना सहा सुए।

सबको पूरा आपे हुए घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये नानक को लिया जापे महला पहला वदी सो जग नानका सचा वेखे सोए।

के चौका कड्डी कार उपराय बैठी कूड़िया मत पिटे भी मत पिटे यो अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन डिठे चुली परे नानक सच त्याई है सच हुए ता सच पाई पूरी चिता।

0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: तुम मौत

जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सार गुपानी। अब ना भजस भजस कब भाई, आवै अंत न भजया जाई। जो किछ करहै

हर की ना सिमरहु दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही श्या

अगमय गोचर रहया अब अंत, पार न पावे को तरनी धर्मंत। कदली पहप धूप परगास, रज पंकज महलियो निवास। द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख

गरुड़ चढ़े गोबिंद आयला, अपने भगत पर की प्रतपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल, कह त धरन इकोडी करू, कह त लेकर ऊपर धरू, कह त बुई गऊ देव जी आए, सब कोई देख।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर पर रहे अशांत मलेच मार पाए अशांत

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म प्रवह कथ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का एहो

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत कूड़े आश्रय करें अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहें क्या मारे न जाना देख जो तुम पाव है सही परिकार सदा खुला संत नाम संत नाम गम गम संत दो असंत कहें सिर्फ।

माता तिस विच धरती ठाक थी धर्म था तिस विच करके नया करमी करमी होए विचार जिथे सोहन पंच प्रवान नदी कर्म सोवे कच्छ पाई उथे पाए नानक गया।

माता मरना चीत न आवै। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे रहाओ।

आठ पहर प्रभ अपना त्याय गुर प्रसाद भव तरिय आप त्याग होइय सब रेणा जीव त्या मरिय सफल जन्म तिसका जग पीतर साध संग नाव जापे सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करे प्रभ आपे।

अनको की जय मित्रा खाकर लै मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नधर प्रभु ते चुटिया नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान विहोणिया गुरबिन ज्ञान न पाल जियो।

दास जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन

मनमुख परम पुलाणा नाथ सरंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यो आरन लोहा पाए भन कढ़ाइए त्यो सतत जोनी पाए पवे पवाइए बिन बुझे सब दुख दुख कमावना होमे आवे जाए परम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम त्याई है मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है।

पवन उड़ाइए एहो किथे कर ओताक महल न पाइए। देहो दीवी अंधकोर अब मुहाइए गर्भ मूसे कर चोर किस रू आइए। गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइए शब्द निवारी आग जोत दी पाइए। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाइए सदा रहे नह काम जे गुरमत पाइए। रात दह हर नाओ मन वसाइए नानक मेल मिलाए जो तुद पवाइए। सूही महला पहला मनहु ना नाम विसार एहन स्याइए जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाइए। मैं अंधले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक ना मोहे मोहनी रहाओ। जय देखो थे नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावे तिवे रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आय कै जन्म मरण परवान हर गुण गाय कै। हो ना ही तू होवे तुद ही साज्या आपे थाप उथाप शब्द निवाज्या। देही पसम रुलाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद पया। तू ना ही

सच्चा तीरथ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नातै मूल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगे न लाए।

गुरमुख आप पछाणे। नाम ते आए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिनका सब किछ होवे, जे विच हो आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामण अत सवाल्यो। फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द समाले।

सब किछ वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला काया कामण सदा दोहेली गुरमुख नाम समाला काया कामण सदा सोहेली गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसै अलख न लख्या जाई मनमुख मुग्ध बूझे नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नाव खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नाव निध पाई गुर के शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावै आपे तोलन हारा एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा मोल किथी नाम पाइये नाही नाम पाइये गुर बीचारा गुरमुख होवे सो काया खोजै होर सब परम भुलाई।

सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा। पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा। सा काया जो सतगुर सेवै सच्चे आप सवारी। विण नामे दर ढोई नाही ता जम करे खुआरी। नानक सच वड्याई पाए जिसनो हर कृपा धारी।

महापुरखा का बोलना होवे किथे परथाए ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल न तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन से बड़ भागी जे उना मिले मिल रहे अंदिन नाम लयेन सेवड भागी जे उन मिल रहे अंदिन नाम लयेन देसी रजक संबाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप तणी सो सच

सतगुरु मेले ता मिल रहा साच रखा और तार मिलिया होए ना विछड़े गुर के हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर के शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभा बंती नार मन मुख मन न भिजई अत मैले चित कठोर सप्पे दुद्ध प्याई है अंदर विस निकोर आप करे किस आखिए आपे बक्सन हार गुर सब्दी मैल उतरे ता सच बनिया सिगार सच्चा साहो सच्चे वणजारे ओथे कूड़े ना टिकन।

द्वार, संता संगत मिल रहा ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार, गुर पूरा पूरी मत है अहनिस नाम त्याए, हमें मेरा वड रोग है विचो ठाक रहाए।

खान खर्चन नान खुटई हार गुण सहजर वन। ना ओए जन्मे ना मरहे ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उपरे हरस्यो केल करन। सज्जन मिले न विछड़े जे अन दिन मिले रहन, इस जग में।

राहौ तिस पह आप वेचाई, दर्शन हर देखने कहताई। कृपा करहता सतगुर मिल है, हर हर नाम ते आई रहाओ। जे सुख देहे ता

अखी काड तरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहालै ता तुझे अरादी जे मार कढ़े भी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई जे तुद वल रह ता कोई केहो औखद तुद विसरै मर जाई जे तुद वल रहे ता कोई केहो आखो त्यो तुद विस

दर्शन कहताई चखड़ झाखी मी वरसे भी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। जो पानी जल बिन है मरता त्यो सिख गुर बिन मर जाई। जो धरती सोभ करे जल बरसै त्यो सिख गुर मिल बिगसाई। सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुद सेवै सो तू है होवै तुद सेवक।

गुरमुख बोले सो थाए पाए मनमुख किच थाए न पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखण जाई सब दिन सरैण देख

रैण दिन स गुर चरण अराधी दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहयो है जत गत तत गोसाई। राग सूही महला चौथा अष्टपदिया कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंदर साचा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथाहो रहाओ।

जो सफाए। सतगुर सागर गुण का नाम का मैं तिस देखण का चाओ, हाओ तिस बिन घड़ी न जीवो बिन देखे मर जाओ। ज्यो मछली बिन पानी है रहे न किते उपाय, त्यो हर बिन संत न जीवई बिन हर नामे मर जाए।

राग सुही महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन।

अनाथानाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत न पेटन जीवन रूप अनूप दयाला रबण गुणा कटिए जम जाला अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया न व्यापै जप गोविंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर्व फला सोई जन पाए तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना।

नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठ्या मन रहस्य क्यों पाइय तिन संग जियो संत सजन मन तृप्त से लायन प्रभ स्यो रंग जियो तिन स्यो प्रीत न तुटई कभु न होवे भंग जियो पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिलो संत सजना नाम जप हो मन।

अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लखवार जियो। साचा ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण साजी तिन संग बसे, आठ पैर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेसरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करण हार, तू है एक अने

मंज कुच जी आ मावणी डोसण हाउ क्यों सोह रावण जाओ जियो इक दू इक चढ़न दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिनी सखी सोह रावया से अब्बी छावड़ी एह जियो से गुण मंज न आवनी हाउ कै जी दोस तरे जियो।

निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनहत।

हर भक्त खजाना बख्शिया गुर नानक किया पसाओ जियो मैं बहुड़ना तृष्णा भुखड़ी हौ रज्जा तृप्त अगाए जियो।

पर जोबन में मत पेयड़ कर पाहुनी बलराम जियो मैली अवगण चित बिन गुर गुण न समावनी बलराम जियो गुरसार न जानी परम पुलाणी जोबन बाद गवाया वार कर दर दर्शन नहीं जाता पिर का सहज न पाया सतगुर पूछ न

वर देहे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो रव रहे अजुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंतर वै सुहाग।

बाबुल दितड़ी दूर न आवे कर पाइये बलराम जियो। रैसी वेख दूर पिर रावी कर सोहिया बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम थोड़ी मत पूरी परदाने। संजोगी मेला थान सुहावा गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए। नानक विछड़ ना दुख पाए।

पवन रूप दिखाया, सखी मिलहो रस मंगल गावो हो, हम कर साजन आया। मंथन अमृत पिन्ना, अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन

मन मोहन मोहया मन तन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुत बिन कौन बुझाए सिद्ध साधिक सियाने के ते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पय देवाने मन राख्या गुर।

आहो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर अपने खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम।

संग्रह सी खरी सरसी जा रावी रंग रात अवगण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदात तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिलहे प्यारे।

प्रभ दूर न होई घट घट सोई तिसकी ना रस बाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिस दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुर पूरे सच पाइये नानक आपे जोग सजोगी नदर करे लिवलाइये फिर

शब्द विचारी करणी सारी राम नाम निसाणो नानम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो मत पत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणै प्रभ जैसे अविना

हो तन जिन स्यो गाड़िया मन लीड़ा दीता लिया तदिया मान जिन स्यो से सज्जन क्यों विसर है जिन दिस आया हो हेर लिया जिया सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई हो हे नीता नीता हाउ बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का होवे वासला कड़ वास लई जय जय गुण होवन साजना मिल साज करीजै साज करीजै गुणे केरी छोड़ अवगण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पेड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए चोल अमृत पीजै गुणा का होवे वासला कड़वा

होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भूला। सुने देखे बाज कहिए दान अनमंगिया दिवे दान दे दाता जग विदाता नानका सच सोई। आप करे कि साखिए होर करे ना कोई सूही महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहजावे साच पावे साच की मत क्यों टले स्नान दान सुज्ञान मज्जन आप छल्यो क्यों छले। पर पंचमो

करम सुकरम कराए आपे कीमत कौन अपे वय तंत मंत पाखंड न जाना राम हृदय मन मान्या अंजन नाम तिसे ते सुजय गुर सबदी सच जान्या साजन होवन अपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करह रलिया करम तरम सबाया अठसठ तीर

अंधा आगू जेतिये क्यों पाथर जाने आप मुसे पत होचिये क्यों रहा पछाणे क्यों रहा जावे महल पावे अंध कीमत अंधली विड़ नाम हर के कछ न सुजे अंध बुड्ढो तंदली दिन रात चानन चाऊक देस उपजे दिन रात चानन चाऊक जे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ कुर पह कर विनंती राहो पाथर गुरदस मन परदेसी जेथिया सब देश पर आया किस पह खोलो गंठड़ी दुखी पर आया दुखी पर आया।

जन्म मरण पौ भागा। अंधरो दुर्मत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अंधन हर गुण गाए। सुन मन पीने सहज सुपाए। जुगम है राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए। सहजे गुण गावे दिन राती किल विख सब गवाए। सबको तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा। जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही। हर गुण गावे तृप्त अगाही। हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख ना लागे आए। दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए। नानक हर आपे छोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही। नानक आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करे फिर अशंख मलेश मर पाए अशंख निंदक करे पास नानक नीच कहे मर अन जाना दे जो कुछ पाव है सही परिता सदा सलाम संत नाम संत नाम गम गम संत दो संत कहें सिर्फ।

बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेव जन माने पर

पराई, हम नाही चिंत पराई रहो। अगम गोचर अलक पारा, चिंता करो मारी। जल दल माई अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर शावा तेरे। तुझ बिन अब न जाने मैं अर साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जो तुद भावे सोई।

निर्मरण जिनको तुम्हार मिल हो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भज्या जन नानक पार परा बलावल महला चौथा आओ संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करहो हर हर नाम बहुत है कल युग केवट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर उच्चरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वह संत पापी पाप असंत कूड़े आर फिर संत मलेश मल पाप है असंत निंदक करें पा नानक नीच कह मारे न जावा देख जो तुम पाव है सही परिता सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें फिर

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वत्या कमाए संत पापी पाप अशंत मूड़े आर करे सदाए संत मलेच मल पाप खाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह जा मारे न जावा के जो सुख पावे सही करी कर सदा सदा संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।